0: और मैं पाचू
1: इटियो और रेडियो पियम येकरे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटियो और रेडियो

0: मार मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम येकरे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो और रेडियो
0: और रेडियो और रेडियो
1: इटी यूनियो और रेडियो।

0: मार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी विन्यो और रेडियो
2: ¿Qué tal, güey? Me dio con güey.

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो